तपः ओम सत्यम ओम तत्सादिधोर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः भुवः ओम स्वाहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम